जाओ छिम्बो छुर माप्या खूब सा मेल नि मछक आ जाशिरा खूब सा मेल ति मछकर जानछारा चो मेल छु जपतायन खु जाना चो मे त छमा ने छना यो जिस ओ खु जारु छु सों आ लंच यमन अर्थ सामी छोटा जगिन यन छु को निवा मे पर तों रो जिशानो अर जारु अर गाय अलुम बुर ग्वा जेंते यंगचर कोलुन दंग चिन जक जिया फ्यक्तंस